या कि दादा मेरे कि मुस्कु दोला कि बीमारी पाचे कि जीस तुरो यार वी लगा सी गिले आपे हाथ यार वी लगा सी गिले आपे हाथ